0: किस्तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो समेला। Yeah.

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Extreme Energy Drink.
1: एनएम द्वारा बचत खाता प्रदेश को प्रगति संग बचत को नाता
2: रारा को निर्मल पानी जस्ते सोच्छ आफ्नो अमूल्य बचत आजै खोलौ कर्णाली प्रदेश विशेष एनएमबी रारा बचत खाता
3: पाउनुहोस् पहिलो वर्ष निशुल्क मोबाइल बैंकिंग इन्टरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड डिमैट र मेरो शेयर पनि

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: पत्र सूत्र दरा दुई दिन को मेला धनपुत्र सूत्र दरा।